0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर।
6: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
7: रेडियो अमन नेटवर्क, मन राम।

0: होम्योपैथिक मेडिकल क्लिनिक के कुमचिप गट मोड़ मैदान के दे आदमियाश्ते लस रजी यानी द 21 तारीख नवाखला 30-31 तारीख पूरी दुई खपल दगा ओपीडी जुकुम दगा न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल क्लिनिक के कई नो दी मुंगसरा डेर ज्यात शॉर्ट ड्यूरेशन चुकुम दे आगा पातिर डेर मुख्तसर वक यानी मुंगबा दाव यू सिर्फ और सिर्फ दो रजे आगा ददी मुंगसरा प क्लिनिक की पाती दी कचरे की तासु रातल ग्वाड़े क्लिनिक ता और डॉक्टर सेब ना खपल इलाज कबल ग्वाड़े नो बिल्कुल तासु हम दगा दो रोजों की रातल शाई जगह डॉक्टर सेब ब्या वापस सीधा मैं बदवी खपल चुकुम पिशावर क्लिनिक ते अल तक बजी अल तक बदवी खपला ड्यूटी चुकुम दे अगब कई नो कचर की तासुरात लल ग्वाड़े और डॉक्टर सेब ने इलाज कबल ग्वाड़े नो बिल्कुल हम दगा दो रोजों की तासुरात तले शाई डॉक्टर सेब ने तासो बेहतरीन इलाज चुकुम देगा तासो हासिल अवल शाई तसुबह राजाई न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल क्लिनिक गट मोड़ मैदान न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल क्लिनिक गट मोड़ मैदान सिंह तासो अंतराशय प्रश्न हथिका जमुंदगा क्लिनिक चुकुम निदा मौजूद दे इनशाला सबाब हम कुलावी द सहर अतो नवाखला माजिगर सलोर बजो पुरीबा डॉक्टर हजरत हुसैन से बखी नो बिल्कुल तासुरा तले शय दीन तासो सेहत वाले सरा मशवरी हम अगस्त शय और बेहतरीन इलाज चुकुम दगा हम तासो तरला से कबल शय और उनको डॉक्टर से मुंगसर हम दगा प्रोग्राम के नास्त कवि मुंगसर हम पदगा प्रोग्राम के मौजूद दी हम बागी तरफ तजू प्रोग्राम के बोर्ड मोस्ट वेलकम और पखिर राले वायु डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु हयात खान सिंह ठीक ठाक खैरियत तबियत खरी
0: बिल्कुल शुक्र दे डॉक्टर साहब अल्लाह करम दे जी तासु संग खे सेहत मिजाज खदे जी
1: बिल्कुल ठीक ठाक जमा तरफ न हम तासुता दुआ और सलाम और जमुंग सोना मैन दिखी जमुंगा मशरान कशरान अमजूरी बाबागान टोल तजमा तरफ न स्पेशल दुआ और सलाम
0: जी डेर मनन जी शुक्रिया थैंक यू सो मच और इधन को दगा जमुंग डेर मुख्तरम जमुंग काबिल कदर डॉक्टर हजरत हुसैन से दगा प्रोग्राम की मुंगसरा मौजूद दी दुए मुंगसरा दगा प्रोग्राम के नाश्त कवि तरला सुबह जो पूरी जमुंगा उस्तासो द आवाज पलिक बांधे द अमन रेडियो द स्टूडियो न मलगरत्या की कचर द कितासो हम रातल ग्वाड़े पदगा प्रोग्राम के शिरकत कवल ग्वाड़े जमुंग डेर मुख्तरम और जमुंगा काबिल कदर डॉक्टर हजरत हुसैन सेब ने तासो द सेहत वाले सरा मालूम हासिल अवल ग्वाड़े नुबिया बिल्कुल तासुरातल शे दगा प्रोग्राम की मुंगता कॉल कबल शय मैसेज कबल शय कॉल ब कवे मुंगता पर 0311-8483-78 0311-8483-78 दगा जमुंग द क्लिनिक हेल्पलाइन नंबर दे पता के बाद हम तासुरातल शे प्रोग्राम की मुंगता मैसेज कबल शय और द कॉल दिलारी हम तासुरातल शे दिन आवाज हम चुकुम पीटीसीएल नंबर दे पति बांधे हम तासु प्रोग्राम की मुंगसरा शिरकत कबल शे जमुंग द पीटीसीएल नंबर दे 0997-310-400 यानी 0997-310-400 बांधे बराजे तासु दगा प्रोग्राम की मुंगता कॉल कबल शय ग्रान उर्दून को सिंग तास्त पत्र चीज मुद प्रोग्राम दगा पैटर्न दे दगा तरीका दा चिपागी बांधी मुंग दगा प्रोग्राम ने चुकुम दे रोजाना शांति को सिंग मुंग डॉक्टर से मखता यो दासी मुहिम और अहम टॉपिक चुकुम दे आगा की दू आगे बांधे जम देर मुख्तरम डॉक्टर से पागी बांधे तफसीलन खबरें तेरे चुकुम दे अगवी ओकी जमुंग उर्दीन की मिनवाल तफसीलन पागी बीमारे बांधे अगवी पोकी इन बाद मुंगता सुता ब्याद कॉल द पारा और दगा शांति द मैसेज द पारा मुंगा टाइम रखू नो पागर टाइम की पागर ड्यूरेशन की बता सुर अतले शे मुंग तो कॉल कवले शे मैसेज कवले शे खपल पेगाम खपल मसला तासु सेहत वाले सर से पुख्तने भी नो ब्याता सुर अतले शे प्रोग्राम के डॉक्टर से ना पुख्तने कवले शे नुनन मुंग ब्याय उदासी मुहिम बीमारी चुकम दे अगर अवड़ीदा डॉक्टर से अक्सर मुंग गुरु चे द स्किन हवाले सर मरीजान ज्यादातर क्लिनिक तराजी अगुई दगा फरियाद दगा जड़ा रवड़ी चे मुंग डेर ज्याद इलाजों ने कर दी मुंग सेहत ने दे मिलाव शिवे और द स्किन मुख्तलिफ बीमारों की अगुई मुबतला भी चाहता एलर्जी भी चाहता नोर मसाइल भी दासी नो होम्योपैथिक की कमुंग गुरु डेर ज्याद के सुना अगा मुंग सर खशी भी हम दी हम दगा वजह बेहतर गणला चे दगा टॉपिक दगा बीमारियों मुंगा प्रोग्राम किस तासु मखे तकीक दू चे तासु तफसीलन पदगी बांधी खबरें तेरे कई चुकुम रूना खुआन दे चुकुम दासी बीमारान दी अगुई द स्किन बीमारी के मुबतला दी दगा तकलीफ देवरता दगा परेशानी देवरता चाहे हम दे बांधे देना मुस्तफीद शी और द होम्योपैथिक तरफ तराशी और यो बेहतरीन इलाज चुकुम दागी तरला से कवि नन मुंगतासो पदगी बांधी पोके जी
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हयात खान से अब तासु यकीनन दे खुल टॉपिक नन सबा चेड़े
0: जी
1: नन टॉपिक उन तासु द स्किन हवाले सर चीजन ऊंची हो यकीनन द डेर मुहिम दे डेर अहम दे और द अहमियत हामिल दे
0: जी जी
1: कपदे बने मुंग तवज्जो और नको यकीनन चि द जमीन द पर डेर ज्यादा द परेशानी सबब या गर्जी
0: जी
1: स्किन یعنی د سرمو

0: हेच कोनो शहरा के जुबंगा वासो कर विशाल कॉस्मेटिक होलसेल के कॉस्मेटिक वाला रे जी हेरा हेरा मोहल्ले की दी दुकान देखा जी अनूर मार्केट की दिन अलावा खालिद जी से सर खेश को की इब्राहिम कॉस्मेटिक बाबा जी के लिए किसम तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स पर खेश को की सर मेला विदले जी और राशिद कॉस्मेटिक्स वाला सर पर नौशहरा हकीमाबाद के जमुग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स सासु पर इंतजार दीजिए और दिन अलावा जमुग आवास दावा की शुक्रिया अखवाड़ बाजार अकोड़ा खटक की मोती बाजार की नवीद कॉस्मेटिक लाल मोहम्मद कॉस्मेटिक वाहिद कॉस्मेटिक नसीर कॉस्मेटिक कारी सुलेमान शिवसरा और जमंग आवाज कमेशक के लिए किसो कर नियाज मोहम्मद लाना सरा पपर्श मोहल्ला की कामरान मोबाइल वाला सर और दगाशांति एसहा कॉस्मेटिक्स वाला सरा शाह खालिद कॉस्मेटिक्स वाला सर मेसा के लिए की सईद रहमान करियानी वाला सर जमंग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स आसो पे इंतजार दीजिए अपर दीर की जमंग आवाज सुकुरी वहीद गुल कॉस्मेटिक अनवर शाह ड्राई फ्रूट खैस रहमान कॉस्मेटिक और लू इर्दीर की जमंग आवाज सुकुरी जी गुरगुरई चौक अथे मरगरे किस्म गावास का सुख मोरी फैंसी कॉस्मेटिक्स वाला सर एम बी टावर वर एम बी टावर की दी दुकान दिया फैंसी कॉस्मेटिक्स वाला सर जमुग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स मिला वेदलेची फते मरगरे की गुरगुरई चौक के हाँ बाकी जमुग आवास थे मरगरे की सुखूरी जमुग आसमानी तमाम प्रोडक्ट्स हार्दिक दसान रसवल दीजिए कारसास कॉस्मेटिक्स वाला सर या कारसास जिन स्टोर वाला सर जमजम मेगा मार्ट वाला सर अलहरम मेगा मार्ट वाला सर दरोड़ा की ग्रीन पैलेस फार्मेसी वाला सर कश्मीर स्वीट एंड बेकर्स वाला सर बाद के अनान हाई फरमाल वाला सर खाल के तासुला हम सुमंग आसमानी प्रोडक्ट्स में लावे दले जी हसुमंग आवास का दवा के सुकूर चरत जी करोड़ा के शायान कॉस्मेटिक लेडीज मार्केट करोड़ा बाजार शाहजी सुपरमार्ट मेन बाजार बेशाम और बेशाम के दिन अलावा शाह फैसल कॉस्मेटिक्स वाला शमसुल हक मार्केट मेन बाजार बेशाम और सुमंग आवास का दवा के अलग बटेग्राम के सुकूरी बटेग्राम की झील मोड़ के मोहसिन शाह कॉस्मेटिक्स वाला सर और लेडीज मार्केट की हम सुमंग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स में लावे दले हो गई कैनवर अली कॉस्मेटिक माजिद कॉस्मेटिक्स वाला सरा हम समंग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स मिला वेदले ताकोट की हाजी जायद सेफ सरा शीना कॉस्मेटिक्स वाला सरा चतर प्लेन के जो सोन द कॉस्मेटिक्स स्टोर मेंबर शाहिद खान कॉस्मेटिक्स वाला सर हम समंग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स मिला वेदले चतर प्लेन की और दिन अलावा सुमंग आवास दावा की सुकूरी बनो शहरा की या दिन अलावा सुमंग आवाज एबटाबाद की सुकूरी मनोशहरा की सुकूरिया और या इस्लामाबाद की या रावलपिंडी की कश्मीर की मुजफ्फराबाद की और या सुमंग आवाज दावा की सुकूरी बटखीले की शाह हुसैन कॉस्मेटिक्स वाला सर जी अयाज खुशबू महल और खैबर कॉस्मेटिक्स वाला सर हम जमुग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स मिला वेदले जी बाकी जमुग आवाज दवा की हंगूपट बाजार के सुकुरी संगीत बाजार के सुकुरी जमुग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स अल्तम सांदर रसवले दी बनू सराय नोरंग लकी मरवत अम्बीरी कला तख्ती खेल तख्ती नसरती यानी खुम से कि हम जमुग आवाज सुकुरी अगर तमाम पिशावर के हम के जमुग आवाज सुकुरी जमुग आसमानी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स असल हर से तजानदर रसवले देखा जी इंशाल्लाह कभी वफा सगन वफा का जुन वफा को दरसबा पूरी जोंदी बारिश हो सबा वे खैस सखुली प्रोग्राम सरसा सुबह खिदमत की हाजिरी को जी तरगी दाओ पर इकबाल रो डॉक्टर इस तरह जान ला इजाजत तौर के दिल्ली अल्लाह फरमान आसमानी कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जिंदाबाद
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है प्यार की एक दुनिया लेकर
1: मोहब्बत समेट कर
3: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
3: रेडियो अमन नेटवर्क

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
0: मोहब्बत समेट कर
3: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
3: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की दुनिया बना जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर।

0: उम्मीद छेड़ेदा असल के
1: वो स्वरूप प्रोग्राम वो स्टार्ट हो गया प्रोग्राम

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: होल सेल तरला सके द देना इलावा एबी ट्रेडर्स ना डोसा कोला कोल्ड ड्रिंक और स्वीट सामान हम होल सेल रेट तरला सके प्रोप्राइटर कारी अब्दुल्ला रबते नंबर दे 0342-098-1857 और बल नंबर दे 0309-5029-246 कप शप पे नुम याद सताए डबाइये सुर दे और कारिये स्पिन दे कप शप पे
1: दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम कम की बची सासो द हर किस्म मरज इलाज कवलेशी लग शुगर ब्लड प्रेशर अरक उन्निसा ला दर्द सर दर्द द विख्तो बे वक्त स्पिनी दिल वर्जे दिल दूसरी के दिल टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी द मेदे मसले द गुर्दो मसले दस्तरगो मसले द गोगुनो मसले द पोजी मसले औ आग मरजुन कम चिप डाग दी औ आग मरजुन कम चिपट दी दगा द टोलो मरजुनो इलाज ख आसान तरीके सरा बेहतरीन तरीके सरा प दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम के द डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल साहब औ दगा रंगी बल सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजमल खान साहब प जेर निगरानी के द सहर अतो बजो न माजिगर सलोर बजो पूरी की गी तासु बिल्कुल रात तले शे यो बेहतरीन इलाज यो कामयाब इलाज आगा तासु डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल से अखपला ओपीडी द हफ्ते रुम्बने सलोर रज के भी पीर मंगल बद औ जुमरात दगाशाने ब्याबल डॉक्टर सीनियर डॉक्टर डॉक्टर अजमल खान से अगवी अखपल ओपीडी पर दरमान होम्योपैथिक सेंटर के द हफ्ते अखिर ने द्रेव रज के भी जुमा हफ्ता औ इतवार नौ पते याद साथ ही दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम नोर मालूम दोबारा पति नंबर हम राबित कबूली शे 0331-47-48-317 0334-3-3-3-3-3-3 पते याद साथ ही दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम
2: द बटग्राम खल को दोबारा खुशखबरी जकचीप बटग्राम के बाद पेखबर टेर तजुर्बाकार लरुन के डॉक्टर डॉक्टर हजरत हुसैन से बाखल ओपीडी कवि दी ओपीडी बा 21 तारीख नवाखला 30 तारीख पूरी की गयी कचर तक तासुता द मेदे मसाइल एलर्जी सर दर्द मला दर्द कमजोरतिया पटो मसले शुगर ब्लड प्रेशर दमा अरकुन्निसा बवासीर एंजाइटी टेंशन डिप्रेशन गुर्दे काने सरा सरा जनानाओं और नारीनाओं पटी मसले यानोरो योशमेर मसलो सरा मखयाई नोतासो न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल क्लिनिक गट मोड मैदान बटग्राम ता तशरीफ रावड़े शाय मजीद मालूमात तासो जमुंग क्लिनिक हेल्पलाइन नंबर ना हम हासिल अवले शाय जमुंग क्लिनिक हेल्पलाइन नंबर दे 0311-84-33-878
3: पेशावर टी दखवन मायार और द इतबार नुमदी उस पेशावर टी पाबटग्राम तुरगल शंगला अलई गुजबांडा ताकोट के पवड़ो और गटो जनरल स्टोर के आसानी से मिलावेगी पेशावर के हम दस्ते आप दे द पेशावर टी मैन डिस्ट्रीब्यूटेड

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अस्सलाम वालेकुम ग्रामीण वालो, जिम मशाल खान और तासु हो रहे रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम रेडियो अमन और दूडी रडेरा मनना।